सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक। सेव and win.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Salam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff, Radio Olive. बोलो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉल्विंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: Awesome.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
2: Hey, this is Ileana D'Cruz.
3: This is me, Ritik Roshan.
4: Hi, I'm Alia Bhatt.
5: Hi, मैं हूँ विवेकानंद।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: आप अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: Awesome.

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ससिकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, this is Benny Deol here.
4: Benny Deol here.
3: Olive Radio 106.3.
4: Jiyo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: The big, big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Geo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian

your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तुमने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi guys, this is Bharat Chetty Khurana, and you are listening to Radio Olive.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये तो आप सबको ही पता है कि हम आज कल एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं और ज्यादा बातें हम AI से करते हैं। हाँ जी, वेलकम एंड गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो टेक टॉक आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजिया के बारे में बहुत सारी बातें जो है हम करने वाले हैं। सो बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारी अमेजिंग खबरें मैं लेकर आई हूँ कि क्या कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया नया हो रहा है, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका वीकेंड किस तरीके से बीत रहा है? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, से एंजॉय करो। बाकी हमारा साथ तो देखो अभी शाम तक का है। मैं हूं आपकी कशिश, एंजॉय करो और मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
4: Jonita Gandhi.
5: Radio Olive, I'm the number one.
3: You are listening to me on Radio Olive.
4: Radio Olive.
3: Gio Bindas.
5: Radio Olive, I'm the number one.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: TNC.

जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कि धीरे धीरे बच्चे जो है ये स्मार्ट होते जा रहे हैं, ये जनरेशन जो है ये बहुत स्मार्ट होती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही आगे जाकर हम ये कहेंगे कि AI जो है ये बहुत स्मार्ट होती जा रही है। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर बहुत अमेजिंग बातचीत जो है वो हम कर रहे हैं एंड हम बात कर लेते हैं जितने भी आईफोन यूजर्स हैं या एप्पल जो भी यूज कर रहे हैं उनकी उनसे बात कर लेते हैं। सो आप लोगों के लिए जो है एक स्पेशल जो है अपडेट एप्पल लेकर आया, जहाँ पर आपकी सीरी जो आपके फ़ोन में कॉल वॉल लगाने का काम करती है ये अब बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो जाएगी एंड ये स्क्रीन पे जो भी चल रहा है ना और ज्यादा होशियारी से उससे सीख कर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। यानी अब देखिए बच्चे स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे करके AI और ज्यादा ओवर स्मार्ट होता जा रहा है। सो देखते हैं कि इससे प्राइवेसी की तो कोई दिक्कत नहीं होगी या किस तरीके से ये AI जो है हमारी हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड बाकी आकर थोड़ी सी देर में एक फैक्ट आपको मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

मैंने ना अभी रिसेंट टाइम में एक अलग रिचुअल जो है वो देखा है कि जब भी कोई रिलेशनशिप में आता है या जब भी किसी को कुछ बहुत स्पेशल गिफ्ट करना होता है ना, वो कुछ बिना सोचे समझे एक फोन गिफ्ट कर देते हैं। और होगा भी क्यों नहीं यार, आजकल फोन जो है कंपैरेटिवली पहले के जमाने से काफी अफोर्डेबल हो गए थे, काफी बजट फ्रेंडली हो गए थे। एंड फियांसेस तो अक्सर एक दूसरे को जो है आईफोन गिफ्ट कर रहे थे। मतलब मुझे तो एक बार को लगने लग गया था कि क्यों ना एंगेजमेंट कर ली जाए, इसी बहाने फोन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे गिफ्ट हमारी किस्मत में कहाँ। अब जो है ये खबर आ रही है कि फोन्स जो है वो महंगे हो सकते हैं। हाँ जी, दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली जो कंपनी है TSMC, उन्होंने कहा है कि रॉ मटेरियल जो है वो अब महंगे होने वाले हैं और आने वाले दिनों में नए फोन्स और लैपटॉप्स जो है इनकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सो देखो, अगर फोन लेने का प्लानिंग कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार ऑफर्स आने दो फिर ले लेंगे, तो मैं तो कह रही हूँ अभी जाकर ले लो। हो सकता है कि पापा मम्मी जो मान चुके हैं फोन दिलाने के लिए वो फिर पलट जाए। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सच पर, इन्हें इंजॉय कीजिए और मेरे साथ 106.3 रेडियो ऑलिव पर बनी रहिए टेक टॉक में। जियो बिंदास।

0: ये खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लूलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लूलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लूलू शॉपिंग वाउचर।
1: लूलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लूलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: TNC.

देखिए आजकल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रैंक जो है वो प्रैंक कॉल्स के जरिए होता है, यानी किसी को भी कॉल लगाकर उसका मजाक बनाना, ये सब हम अक्सर किया करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे पहला मोबाइल फोन कॉल था वो भी एक प्रैंक था, तो फिर 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहां पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन 1973 मार्टिन कूपर ने जो है, जो एक मोटोरोला के इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहला जो मोबाइल फोन कॉल था वो अपने राइवल AT&T को लगाया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए मैं एक वायरलेस फोन से आपसे बात कर रहा हूँ और ये टेक्नोलॉजी हम ले आए, लेकिन आप नहीं ला पाए। ये कैसा फ्लेक्स हुआ यार। लेकिन आजकल देखो प्रैंक कॉल करना बहुत महंगा भी पड़ता है एंड कहीं ना कहीं एक स्पैम के तौर पर आपको टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि वो बता भी देता है। अब सबके नाम जो है वो हमें ऑलरेडी हमारा फोन बता देता है कि ये नंबर जो है इस इंसान का हो सकता है, तो प्रैंक कॉल्स करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन आई होप कि आप लोग इतने स्मार्ट है कि आपको एक प्रैंक कॉल और एक फ्रॉड कॉल के बीच में फर्क पता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

आजकल ना कंपटीशन होने लग गया है कि मेरा फोन आपके फोन से किस तरीके से स्मार्ट है। काफी सारे लोग ये जो है ब्रैग करते हैं इस बारे में कि मेरा फोन तो बिना हाथ लगाए जो है मेरी मम्मी को कॉल लगा सकता है। कुछ लोग ये ब्रैग करते हैं मेरा फोन जो है वो मैं कार चलाते चलाते यूज कर सकता हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है ब्रैग करने के लोगों ने तरीके निकाल दिए। बस आजकल समझ नहीं आता है कि कितना स्मार्ट होना चाहिए एक स्मार्टफोन को सबसे स्मार्ट होने के लिए। वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलो पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए जो है टेक टॉक लेकर आ गई हूँ। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बातें जो है वो हम करने वाले हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आपकी पॉकेट में है या आपके पास रखा हुआ है ना, वो नासा के कंप्यूटर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड ज़्यादा एडवांस है। हाँ जी, 1969 में जब एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजा जा रहा था उस टाइम जो कंप्यूटर एडवांस थे ना उससे 10, 20, 30, 40, 50, 60% ज़्यादा एडवांस इस वक्त आपका स्मार्टफोन है। सो आपके स्मार्टफोन की थोड़ी सी वैल्यू करो। एंड ये तो सोच रहे हो ना कि यार इससे भी ज़्यादा स्मार्ट कंप्यूटर चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। स्मार्ट आपका दिमाग होना चाहिए। बस उसी स्मार्ट दिमाग को जो है लगाओ और अमेजिंग वाले गाने जो है एंजॉय करते जाओ। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, तब तक एंजॉय करो गाने और कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉल्विंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to
5: TNC.

आपने टार्ज द वंडर कार वो जो एक मूवी आई थी जिसमें एक पर्पल कलर की बहुत ही अमेजिंग वाली गाड़ी जो है वो होती है एंड वो गाड़ी अपने आप जो है कहीं भी चली जाती है एंड पता ही नहीं चलता है कि वो रात में कहीं घूम कर आई है. वैसा ही कुछ सीन जो है अब रियल लाइफ में भी हो रहा है. देखो जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ. एंड सच में एक ऐसी ही जो खबर है वो हमारे सामने आई है. लंदन में जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ने गजब का सीन जो है वो क्रिएट कर दिया है. एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सारी जो गाड़ियां हैं वो रात के बीच में एक जगह जमा हो गई और एक दूसरे को हॉर्न मार मार के पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी. तो यार अब वो टार्जन द वंडर कार वाला भी सीन अगर किसी दिन हमें होता हुआ दिख जाए तो उसमें कोई दोहराए नहीं है. फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर. इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

देखिए एआई सबको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम है जो एआई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एंड हम चाहते हैं कि एआई करे लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहा। जैसे मेरा तो सबसे बड़ा सरदर्द यही होता है कि आज खाने में क्या खाऊं। अगर एआई मुझे बिल्कुल सही सही बता दे तो बहुत ही मजा आ जाए, लेकिन एआई जो है या तो बिल्कुल ही दाल चावल वाले एग्जांपल देता है मेरे को, या तो बिल्कुल ही फैंसी फैंसी बताता है, कुछ मिड बता ही नहीं सकता। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ रोबोट्स और एआई की, तो बहुत ही नए नए परचम जो है ये लहरा रहे हैं, और अभी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो 20,341 फुट ऊंचे वोल्केनो पर जो है क्लाइंब कर चुका है, एंड अब जो उसकी टीम है ये इसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखो जी, एक ये तो काम था कि पहाड़ जो है हम चढ़ा करते थे, लेकिन अब वो भी रोबोट करेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर में और बातचीत जो है जारी रखेंगे। आप अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करो, टेक टॉक एंजॉय करते रहो, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: T-E-C-A.

चलो जी, वीकेंड जो है वो अच्छा गुजर गया आप लोगों से बातचीत करते हुए, लेकिन अब जाती हूँ घर पे जो है कपड़े वपड़े रखे हुए हैं वो सब भी तो धोने पड़ेंगे ना यार, वो थोड़ी ना कोई AI आके मेरे लिए करके जा रहा है। जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप टेक टॉक जो है मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का। कल मुलाकात होगी वापस 10 से 1 लाइफ मस्त है में, सो बस आ जाइएगा वहाँ। और अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हो या आपको कुछ भी मुझसे कहना हो तो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी जरा धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए और मुझे याद करते रहिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लमर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.

Welcome, good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Happy Weekends. So Thursday ko, matlab hum sab ko ek na ek plan to yaad aata hai, ek na ek kaam to yaad aata hai, aur aisa lagta hai ki yaar aaj ka din बहुत एंजॉय करने वाले हैं. पर थर्सडे के साथ साथ अब फ्राइडे भी ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है. तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फ्राइडे को दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो थर्सडे रात से ही वीकेंड मोड में चले जाते हैं, और दूसरे वो जो फ्राइडे को भी अलार्म के बिना 6 बजे उठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करूं. वैसे जून का वीकेंड कतर में थोड़ा अलग होता है. आपको पता ही है कि बाहर टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन सिटी की एनर्जी लेवल उतनी ही हाई होती है. कहीं ब्रंचेस चल रहे होते हैं, कहीं फैमिली आउटिंग, कहीं स्टेकेशन, तो कहीं लोग बस एसी के सामने बैठकर बोल रहे होते हैं कि यार यही मेरा वेकेशन है. सो आज के हैप्पी वीकेंड में हम बात करेंगे फैमिली इवेंट्स की, फुटबॉल की, स्कॉलरशिप की, कार्स की और ओटीटी रिलीज की. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये भी होगा कि बिग फैट वेडिंग्स पर क्या आपका टेक है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते भी तो भी शायद मैं इतनी बिग फैट वेडिंग्स में अपने यू नो हार्ड अर्न मनी को नहीं खर्च कर पाती. बट आप क्या सोचते हैं इस बारे में बात करेंगे. सो आपका आइडिया वीकेंड का क्या है, बाहर जाने का, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अभी तो मतलब थोड़ा सा घर पे ही रहते हैं, एंजॉय करते हैं. बाय द वे नंबर है 3311063. मैं हूँ मुस्कान और ये है रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

मतलब मैंने सुना था मेडिटेशन और पिलाटेस के बारे में, पर एक्वा पिलाटेस मैंने नहीं सुना था बॉस। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीकेंड पर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो शायद ये अपडेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर पार्क और प्रीमियम मिलकर यू नो समर स्प्लैश एक्टिवेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लोग आने वाले हैं। बट इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि इस एक्टिवेशन को 30 जून तक रेगुलरली आप इंजॉय कर सकते हैं, शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, व्हेनेवर यू आर फ्री। सो टुडे इज जस्ट 12th ऑफ जून, सो अभी काफ़ी टाइम है। सो आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आपके बचपन का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन था, तो आप किसका नाम लोगे? बाय द वे, मैं कार्टून फैंस कभी थी नहीं, मतलब उन फैंस में मेरा नाम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं ना कार्टून्स बहुत बहुत कम देखती थी। बट यू नो जब आपके सिबलिंग होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं और यू हैव टू वॉच। तो मुझे याद है घर में बहुत सारे ऐसे कार्टून्स चलते रहते थे, बट यार मेरा कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है नहीं। व्हाट अबाउट यू? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: गानों के साथ ये हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
4: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.

पीरियड, यस। कतर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पहली बार प्राइवेट स्कूल फीस जो है वो पॉलिसी को लॉन्च किया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स। भाई फ्राइडे है, आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्लान्स चल रहे होंगे और इन बिटवीन मैंने सोचा चलो बात करते हैं थोड़ी सी कतर की। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल अपडेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है कि अगर स्कूल फी इंक्रीज होती है तो पेरेंट्स को उसकी इन्फॉर्मेशन 18 मंथ्स पहले दी जाएगी, मतलब लगभग डेढ़ साल पहले। अब इसका फायदा क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो, बजट मैनेजमेंट कर सकते हो, और अगर कोई फैमिली स्कूल चेंज करना चाहे तो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करने का भी टाइम मिल जाता है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एजुकेशन डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते, इमोशनल भी होते हैं, और इसीलिए पॉलिसी काफी अप्रिशिएटेड है। सो आई विल आस्क वन क्वेश्चन विद यू कि आपको लगता है कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी कतर में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो बहुत ही क्लियर हैं। व्हाट अबाउट यू? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस।

0: बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए, लोनो पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक, लूनो, मास्टर कार्ड, प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Radio Olive Par. आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
5: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है
3: Cool Song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

भाई फुटबॉल का सीजन तो कल ही स्टार्ट हो चुका है. फुटबॉल फैंस के लिए अब ऑफिशियली फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है. बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कल से स्टार्ट हो चुका है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स. सो इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट दुनिया भर में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है. अब क्लब्स सिर्फ रीजनल चैंपियंस नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करेंगे. और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, फुटबॉल का बिजनेस पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग हर साल ग्रो कर रहे हैं. मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग फुटबॉल जो है दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है. मतलब पहले मुझे लगता था यार ये क्रिकेट ही है जो हम देखते रहते हैं, कभी कोई टूर्नामेंट चालू हो जाता है कभी कोई टूर्नामेंट, बट मैं गलत हूँ. यहाँ पर फुटबॉल है जो दुनिया का सबसे ज्यादा वॉच्ड स्पोर्ट्स है. सो कतर ने भी पिछले कुछ सालों में फुटबॉल इकोसिस्टम में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है. और 2022 तो हम सबको याद ही है, मतलब हम सब यहाँ पर इंजॉय करने के लिए शायद इट वॉज द फर्स्ट टाइम हम सब ने इतना इंजॉय किया था जब फीफा 2022 चल रहा था. सो इस बार अगर आप किसी एक फुटबॉल क्लब को लाइव देख सकते हो तो कौन सा आप चूज करोगे? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

यहाँ पर आज वीकेंड प्लान्स जो हैं वो सबके बन चुके हैं, या इस टाइम पर हर कोई यू नो अपने वीकेंड को सेलिब्रेट कर रहा है, कोई ग्रोसरी खरीदने जा रहा है तो कोई यू नो दोस्तों से मिलने। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस हैप्पी वीकेंड्स। सो बात करते हैं थोड़ी सी कतर की कि आपको पता है 8,000 महीना और बिजनेस क्लास टिकट्स मिल सकते हैं आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। आज अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि कतर का जो अमीरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो फिर से ओपन होने वाला है। 1st of July से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी 15th of August तक, और बेनिफिट्स ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव है। हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा 8,000 कतरी रियाल का, ट्रैवल अलाउंस होगा, बिजनेस क्लास टिकट होंगी और प्री डिपार्चर सपोर्ट होगा, और टॉप यूनिवर्सिटीज में स्टडी के मौके तो मिलेंगे ही। सो बैचलर्स, मास्टर्स और PhD लेवल पर आप इसे यू नो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है हमेशा, और ये प्रोग्राम लिटरली फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। सो अगर आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिले तो आप किस यूनिवर्सिटी को चूज करोगे, थोड़ा सा मुझे बताइए। 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर। बाय द वे, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि मैं ना टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छा है कि लाइफ के कुछ लेसन जो हैं वो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो बस मैं उसी यू नो रास्ते पर चल रही हूँ, जो जैसा सिखा देता है वैसा सीख लेती हूँ और फिर उसके ऊपर सोचती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड. और यहाँ पर ना फ्राइडे आते ही हम सबकी एनर्जी जो है वो एकदम पीक पर होती है, और फिर जैसे ही सैटरडे खत्म होने वाला होता है और हमें लगता है कि संडे से ऑफिस जाना है, सब लोग वापस से यू नो ट्राई कर रहे होते हैं वर्क मोड में आने का. बाय द वे, 1st of July से 31st of July तक DECC में एक थीम है विच इज मोर टू इमेजिन अ होल वर्ल्ड ऑफ फन. मतलब पिछले एडिशन में थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज आए थे, और इस बार क्या होने वाला है, कतर टॉय फेस्टिवल ऑफिशियली जुलाई में वापस आ रहा है, और इस बार और भी बिगर अट्रैक्शन जो है वो लेकर आ रहा है. सो टॉय फेस्टिवल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, पेरेंट्स भी सीक्रेटली से इंजॉय करते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बहाने ही शायद पेरेंट्स इंजॉय कर लेते हैं. सो अगर आपके बच्चे का फेवरेट टॉय मैं पूछूं तो क्या है वो, 3311106 पर बताएगा. और अगर आपको लगता है कि यार शादी तो हुई नहीं, बच्चे तो है नहीं, या फिर शादी हो गई है बच्चे तो है नहीं, पर फिर भी आप इसे जाकर इंजॉय तो कर ही सकते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉल्विंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. Happy

हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं लड़कों की बात करूँ, तो उनके लिए कार ना सिर्फ मशीन नहीं होती, मतलब कार उनके लिए एक अलग ही इमोशन है, लाइफस्टाइल फेस्टिवल आप इसे कह सकते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल कार एग्जीबिशन है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं, तो बिल्कुल नहीं। एस्ट्रो वर्ल्ड ऑटोमेटिव एग्जीबिशन कार कल्चर सेलिब्रेट कर रहा है मॉडिफाइड कार्स, परफॉर्मेंस बिल्ड्स और ऑटोमेटिव कम्युनिटी, फोटोग्राफी, कॉफी कल्चर, लाइफस्टाइल, सब कुछ एक साथ। सो इसका जो एंट्री टिकट है विच इज 75 का 3 रियाल, जिसमें कॉफी भी इंक्लूडेड है, और इसीलिए जो कार के शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर जरूर जाते हैं। सो कार कल्चर ना अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहा, बेसिकली सेल्फ एक्सप्रेशन बन चुका है। सो आप स्पोर्ट्स कार चूज करोगे या लग्जरी SUV, जरा बताओ मुझे 3311063 पर। बाय द वे, जब भी कार की बात आती है ना, तो हर कोई कंफ्यूज रहता है कि यार फैमिली के हिसाब से कोई गाड़ी ली जाए या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कोई स्पोर्ट्स कार ली जाए। सो ऐसे आपके मन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा। सो बताइए मुझे 3311063 पर। गाड़ी ड्राइव करते करते फटाफट से यू कैन सेंड मी वॉइस नोट ऑन माई व्हाट्सएप विच इज 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC Apply.

वीकेंड पे एक सवाल मन में आता है कि बिंज वॉच करने का मन तो है पर हर वीकेंड एक सवाल कि क्या देखें। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड। सो नेटफ्लिक्स पर हफ्ते में काफी यू नो इंटरनेशनल कंटेंट जो है वो ट्रेंड करने लगता है और हर हफ्ते मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग कॉन्टेंट सेलेक्ट करने में कभी कभी ना कॉन्टेंट देखने से ज्यादा टाइम लगा देते हैं। मतलब सोचिए कि 40 मिनट आप लगा रहे स्क्रॉल करने में और 20 मिनट आपने सिर्फ एपिसोड देखा है। तो मुझे लगता है यार ऐसा क्यों कर रहे हो। सो इसीलिए आपका टाइम बर्बाद ना हो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इस बार नेटफ्लिक्स पर आप क्या क्या देख सकते हो। एक तो नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते यू नो माधुरी दीक्षित की मूवी आई है, साथ ही साथ उसमें तृप्ति डिमरी भी है एंड और एक यू नो इन्फ्लुएंसर है धारा, वो भी है और तीनों लड़कियां जो हैं वो मिलकर बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करती हैं। तो आप मूवी पर्सन हो या सीरीज पर्सन सबसे पहले तो ये बताओ 3311063 पर। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि करिश्मा कपूर भी इस बार ओटीटी पर आई हैं। पिछले ही हफ्ते एक मूवी रिलीज हुई विच इज ब्राउन, जिसमें वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जिनका नाम है रीटा ब्राउन और वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। बहुत ही बढ़िया है, मैंने सिर्फ 2 ही एपिसोड्स देखे हैं इस हफ्ते मतलब इस वीकेंड पे, बाकी का आगे देख के पूरा रिव्यू जरूर दूंगी। पर इसी के साथ आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स और अभी बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्या रहा है। कभी कभी ना ओटीटी पर कोई शो आता है जिसमें ना सुपर हीरोज होते हैं, ना ही कोई माफिया, ना ही कोई मिस्ट्री, बस फिर भी वो दिल जीत लेते हैं और वो गुल्लक उन्हीं शो में से एक है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स। और अब इसका सीजन 5 आ चुका है कुछ दिन पहले और ऑनेस्टली अगर आपने पहले सीजन देखे हुए हैं तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि इस शो का मैजिक क्या है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, गुल्लक जो है सोनी लिव पर स्ट्रीम होता है और अभी तक इसके 5 सीजन जो है वो आ चुके हैं और स्टोरी किसी बिलेनियर फैमिली की नहीं है, किसी पैलेस की नहीं है, ना ही कोई बहुत कुछ हाई फाई है। यहाँ पर आपको दिखेगा सिंपल सा एक मिश्रा परिवार, टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, पापा जो हर पैसे का हिसाब रखते हैं और मम्मी जो घर को संभालती हैं, और दो भाई जो हर घर के भाइयों की तरह कभी लड़ते हैं तो कभी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और शायद इसीलिए गुल्लक इतना सक्सेसफुल है क्योंकि आप शो नहीं देखते, आपको अपना घर देखने के लिए मिल जाता है। सो इसका फर्स्ट सीजन मैंने बहुत ही अच्छे से देखा था। सीजन 2 और 3 में फैमिली रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हुए और सीजन 4 तक आते आते कैरेक्टर्स फैमिली मेंबर जैसे लगने लगे थे। मतलब ऐसा लगा कि बस ये नहीं देखेंगे तो फिर दिन पूरा नहीं होगा। सीजन 5 में क्या है ये आप खुद देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका बिल्कुल भी जो वो सस्पेंस जिसे कहते हैं उसको खराब नहीं करूंगी। थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ और वी विल टॉक अबाउट लॉट मोर। सुन रही है रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस हैप्पी वीकेंड्स. सो यहाँ पर वीकेंड की बात हो ही रही थी और हम OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली नेटफ्लिक्स पर भी बहुत कुछ आया है. और उसके अलावा रीटा ब्राउन करिश्मा कपूर का नया कैरेक्टर है, जिसमें वो एक बहुत ही बढ़िया पुलिस ऑफिसर है. ब्राउन सीरीज का नाम है, जो आपको Z5 पर मिल जाएगी. और उसके अलावा तीसरा जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, जस्ट गुल्लक का 5th सीजन. भाई 4 सीजन देखने के बाद अगर 5वां आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको फटाफट से देख लेना चाहिए. मेरे साथ क्या होता, 5th सीजन आने से पहले मैंने 4th देखा ही नहीं था. मैंने 1, 2, 3 सीजन तक देखा था. सो सबसे पहले 4th सीजन खत्म किया और उसके बाद अभी आई एम ऑन 5th सीजन. बड़ा मजा आ रहा है. इसी के अलावा बात करते हैं कि वीकेंड जो आज चल रहा है, फ्राइडे, आई एम श्योर आपके बहुत सारे जो काम थे वो आपने निपटा लिए होंगे. ग्रॉसरी लेना, घर को क्लीन करना, बच्चों के लिए जो भी लाइन अप करनी होती है चीज़ें, वो सब करना. और म्यूजिक और वीकेंड का कनेक्शन भी थोड़ा सा अलग होता है. एक अच्छा गाना, एक लॉन्ग ड्राइव और मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है. इवन रिसर्च के अकॉर्डिंग फेवरेट म्यूजिक जो है वो डोपामाइन रिलीज करता है, मतलब साइंटिफिकली भी मूड बेटर होता है. सो कौन सा गाना सुनते ही ना आपका मूड जो है वो इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है. मतलब अगर कोई पुराना गाना या फिर आजकल के जो म्यूजिक है वैसा कुछ, क्या पसंद है आपको बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.

इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जब आप लिस्ट देखोगे यू नो मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग्स की, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी शादियां नजर आएंगी. सो मुझे लगता है ये शादी है या कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है भाई. आजकल वेडिंग्स खुद एक इंडस्ट्री बन चुका है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स. सो वर्ल्ड की कुछ वेडिंग है जो बिलियन डॉलर हेडलाइन तक पहुंच चुकी है. प्राइवेट जेट्स, डिजाइनर आउटफिट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट. और लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है, यंग जनरेशन में इंटीमेट वेडिंग्स भी पॉपुलर हो रही है. सो अगर मेरे पास इतना ज्यादा अमाउंट होता टू यू नो स्पेंड इन वेडिंग, तो भी शायद मैं तो नहीं करती. मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है और आपको लगता है कि ये अमाउंट खर्च करके आप एक अच्छी वेडिंग कर सकते हो, तो क्या आप उतना खर्चा करोगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये फ्यूचर के लिए सेव करना ज्यादा बेटर है. रिसर्च के अकॉर्डिंग कपल्स जो है वो इंक्रीजिंगली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सिंपल वेडिंग्स को. उनको लगता है कि नहीं यार ये जो अमाउंट है ये हमें आने वाले टाइम में काम आएगा. सो अगर आपकी वेडिंग हो तो ग्रैंड सेलिब्रेशन या फिर सिंपल एलिगेंट सेरेमनी, क्या पसंद करोगे आप. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
3: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: बात है सर, क्या पर ये बात है।
6: कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
0: Ab suniye, Olive ka zabardast hai.

इस वीकेंड का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कभी प्लान ही नहीं करना वीकेंड को. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड. सो दोस्तों, वीकेंड का असली मैजिक ना कभी कभी प्लान्स में नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में होता है. एक कॉफी, एक कॉन्वर्सेशन, एक सनसेट, एक फैमिली डिनर और लाइफ की बेस्ट मेमोरीज यूजुअली सिंपल मोमेंट से ही बनती है. तो इस वीकेंड एक मेमोरी जरूर बनाइए. वैसे फ्राइडे इज ऑलमोस्ट ओवर, पर अभी भी डिनर का टाइम बाकी है. इंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ बाहर जाइए, लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, जो मन करे करो. और याद रखो कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती, कभी कभी फ्राइडे इवनिंग का एक पीसफुल मोमेंट भी बेस्ट हो जाता है. सो हैप्पी वीकेंड. सुन रेडियो ऑल ऑफ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Radio Olive, 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.